बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए और हमने तीन व्यायामों का जिक्र करा था। आज के एपिसोड में मैं आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे उन बचे हुए दो व्यायामों के बारे में और आपका आत्मविश्वास को कैसे निर्माण करें इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, एपिसोड शुरू करने के पहले सुनते हैं ये गीत, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, फिल्म मैं नशे में हूँ, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार शंकर जयकिशन और इसे गाया है मुकेश ने।

बहनों और भाइयों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था, एक फ्रंट सीटर बने, दो आंखों का संपर्क करने का अभ्यास करे, तीसरा 25% तेज चले। आइए अब चलते हैं चौथे व्यायाम पर, बोलने का अभ्यास करे। कई बार गहरी धारणा वाले लोग रुक जाते हैं और चर्चा में भाग लेने में असफल हो जाते हैं। यह आत्मविश्वास की एक साधारण कमी है। वह सोचते हैं कि मेरा राय बेकार है, अगर मैं कुछ कहूं तो मैं भी मूर्ख दिखूंगा, समूह के अन्य लोग शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। सकारात्मक पक्ष पर जितना अधिक आप बोलते हैं, उतना ही आप अपने में जोड़ते हैं आत्मविश्वास, और अगली बार बोलना आसान है। बोलो, यह एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली विटामिन है और इस आत्मविश्वास निर्माता को उपयोग में जरूर लाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, फिल्म काला पानी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ST बर्मन, और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

बहनों और भाइयों, आइए चलते हैं पांचवें व्यायाम पर, जो है मुस्कुराना। कई लोगों ने कभी न कभी सुना है कि एक मुस्कान उनके आत्मविश्वास को एक वास्तविक बढ़ावा देता है। मुस्कान आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट दवा है, लेकिन बहुत से लोग कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी डर महसूस होने पर मुस्कुराने की कोशिश नहीं की है। एक सच्ची मुस्कान आपकी बीमार भावना को ठीक करने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। यह दूसरों के विरोध को पिघल देता है। मैंने यह भी कई बार सुना है, जब मुझे किसी बात का डर होता है या जब मैं गुस्से में होता हूं तो मुझे मुस्कुराने का मन नहीं करता। बेशक ये ठीक है, आप मुस्कुराते नहीं है, कोई ये नहीं करता। यह तरकीब है अपने आप को जबरदस्ती बताने के लिए कि मैं मुस्कुराने जा रहा हूं, और फिर मुस्कुराओ, मुस्कुराने की शक्ति का उपयोग करो। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, फिल्म राजा रूपमती, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार SN त्रिपाठी, और इसे गाया है मुकेश ने।

बहनों और भाइयों, आइए अब हम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 5 प्रक्रियाओं का उपयोग करें। पहला, क्रिया भय को दूर करता है। अपने डर को अलग करें और फिर रचनात्मक कार्रवाई करें। स्थिति के बारे में कुछ भी न करने से डर मजबूत होता है और आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। दूसरा, अपने मेमोरी बैंक में केवल सकारात्मक विचारों को रखने का सर्वोच्च प्रयास करें। नकारात्मक विचारों का मानसिक राक्षस न बनने दे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, झूमता मौसम मस्त महीना, फिल्म उजाला, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है मन्नडे और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, तीसरा व्यायाम, लोगों को उचित क्रम में रखे। याद रखे कि लोग जितने अलग है उससे कहीं ज्यादा एक जैसे होते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करे और एक समझदार रवैया विकसित करे। चौथा व्यायाम, वही करने का अभ्यास करे जो आपके विवेक आपको बताता है। यह अपराध बोध का विकसित होने से रोकता है। जो सही है वही करना, यह सफलता की एक व्यावहारिक नियम है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, मैं रंगीला प्यार का राही, फिल्म छोटी बहन, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है लता मंगेशकर और सुबीर सेन ने।

बहनों और भाइयों, आप जो कहते हैं और करते हैं उससे आपका आत्मविश्वास झलकनी चाहिए। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इन छोटे तकनीकों का अभ्यास करें। फ्रंट सीटर बने, आंखों से संपर्क करें, 25% तेज चले, बोलिएगा और मुस्कुराइए। तो चलो दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, हो कली अनार की ना इतना सताओ। फिल्म छोटी बहन, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

बहनों और भाइयों, अब आप जानते हैं कि आपका आत्मविश्वास को कैसे विकसित करें। तो हर दिन इन टेक्निक का अभ्यास करें और देखिए कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, रुक जा ओ जाने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। फिल्म कन्हैया, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इसे गाया है मुकेश ने।

बहनों और भाइयों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि आपका सोच को कैसे बदले। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।